हमरा मान तहनो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बेनो बूढ़ते अदकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधे आई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद, राम नाम लेही गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई बारह जो जन छत्र चल था देही गिरज नखाई सर्व सो इनकी लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई दुर्वासा सो करत ठगौरी जादवे फल पाए कृपा करी जने अपने उपर नाम देव हर गुण गाए दस बैर अग्न मोहे बस कीनी पंचों का मिट नावो सत्र दोए भरे अमृतसर बेको मार कढ़ावो पाछे बहुर ना आमन पावो अमृत बाणी करते उचराओ आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हमें उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो यह संसार ते तभी छूटो जो माया ने लिपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेहता दर्शन पावो इत कर भगत करे जो जानो तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो ए संजम हर पाई है मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा कर हला ज्यों कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरा मन रामैया तेरा नाम रूडो रूप रूडो आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ ज्यो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पावरला ज्यो कोकल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी कौ जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला ज्यो तरणी कौ कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया बारक कौ जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली कौ जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डिठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारना जमकारना पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या यार पाओ नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगता की त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गवारी दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे कोल जन मदे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी बिशव का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड ताचे बाधवा कर्म कर अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री कर्म कर कपाल मफीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतार शिखर सुनागर नदी चे नाथं कर्म कर खार मफीट सरी दादी ले लंका गाड़ ओ पाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आन तोखी ले हरी कर्म कर कशौटी मफीट सरी पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे रामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा।

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपव ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त है, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर संबंध मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतन।

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट उतस बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वडभाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार परयो तुमरे प्रभु द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानके अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जान

मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे हैं आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराधे तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी लाए लाए लड़ दास जने अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसै हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह बिसर

संत सतियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए तांथनंतर आप जलथल पूर सोए जलथल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पाज सरन स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए सलोक चित जे चितविया सो मैं पाया नानक नाम ते आए सुख सवाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किल बिख बुझी तपत्या गानिया गै पुजाली ने दया कीने अपने कर मानिया लै अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैत सरी संत महला पंजवा पादानु संसार गर्भ अटिया करते पापा नेक माया रंग रटिया लोभ मोहे अभमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म तूतै डिठिया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करै अनेक हर नाम ना गावही पर मैं जोनिया संख मर जन्मै आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवै बीज बोवस भोग भोगै किया अपना पावै रतन जन्म हर अंत जूवै प्रभु आपना पावही बिनवंत नानक परमै परमाए खिन एक टिकन ना पावही जोबन गया बती।

है। नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै, पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सिया राधन नै बिसरंत नाम अचत, नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। शीतला मन मजाहे पलक न थीवै बाहरा, नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच धनी पौड़ी। आसावंती आस गोसाई पूरी है, मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है, देहो दर्स मन चाओ ले जाए विसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है, पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है, नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है। हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे, नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा। हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा, चरण पुनीत पवित्र चाले प्रपथा। संता संग उदार सगला दुख लथा, सलोक पावी उदूत करण हर रमण संजोग पूर्ण। गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त, कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे, नानक सावेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी। सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई, सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई, वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण, शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास, नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी। मेल लहो दयाल टह पै द्वारे, रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारे। भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया, तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया। कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया। सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन, निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट उदरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन। तोट न आवै मूल संचया नाम तानो, संत जना स्यो संग पाइय वड्डे पुन। आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन। सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पहे दयाल।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन माने कथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जसी उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ ते तीस ते आयो। नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत्यो पाम। नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मेर संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो। जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्थारा वि धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावे। बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा। हर निकट बस्त कश नजर ना आवे हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहु सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा। बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा। सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राखे उधर मजारा। सो वैसा हर सेवो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन कौ करहो नमस्कारा। हर कृपा ते पाईए हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किश कीमत कही ना जाए। नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावे तवे छड़ाए। राग बैराड़ी महला पंजवा कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ। जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। यक अर्ज गुप्तम पेस्तो दर गोस कुन करता।

हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए, जिन गुर का पाणा मन्या तिन कुम कुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंदे ते जन परवाना, तिन मिटाओ नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावै, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावै। जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ घुम जाया, ओए आप छोटे परिवार स्यों सब जगत छुड़ाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो। जो गुर सिख गुर सेवन दे से पुन प्राणी, जन नानक तिन कौ वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया, हर दरगह पहनाइया हर आप गल लाइया। जो गुरमुख नाम ते आएंदे तिन दर्शन दीजै, हम तिनके चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पी जाए। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया, हर हर कदे ना चेते ओ जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय और तारे, तिन जम कंक तिन जम नेड़ ना आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने, नानक जन सतगुर भेटिया रंग रलिया माने। सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ, हाउ गुर विटों सदवारिया जिंद तड़ा नाओ। सो धन गुरु साहब आस है हर दे सनेहा, हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोलदी हर नाम सुहावी, जिन सुन सिखा गुर मन्या तिन्ना पुख सब जावी। हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर्च लै जाइए। जिन गुरमुख हरिया राधिया से साह वरदाने, हों सतगुर कौ सदवारिया गुर बचन समाने। तू ठाकर तू साहेबो तू है मेरा मीरा, तुद पावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस पावै नानका साई गल चंगी। तिलंग महला नावा काफी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चेतना है तौ चेत लै। निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बिहात है, फूटे कट ज्यो पानी रहाओ। हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना। अजहू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावै, कहो नानक ते भजन ते निरपै पद पावै। तिलंग महला नावा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया। जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होया रहाओ। मात पिता सुत बंद जानो हित जान स्यो कीना, जियो छूट्यो जब देहे ते डार अगन मैं दीना। जीवत लो व्यवहार है जग कहो तुम जानो, नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो। तिलंग महला नावा हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कयो मान लै मेरो रहाओ। संपत रथ तन राज स्यों अत नेहो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो।
जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगाड़ियो, पाप करत सुख च्यो नहीं न गर्भ निवारियो। जेह बिद गुरु उपदेसिया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार कै गहु प्रभ शरण आई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, एह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी नाहे रहाओ। द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खलक म्याने, श्याम मूर्त नाहे असमान म्याने। लहंग दरिया गुसल कर दन बूंद, कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहा मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का ओह करे जन सोए।

दरियाओ तू बिहंद तू बिसियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं बिचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सामले बरना आसपात गजपात नर नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोनो नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरनावण पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपे हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जैसो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासिया साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया चल सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवे किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मत कोए। ताहे सारे साज जाने सब सोए नाव नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वरताए सी।
ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲਤਾਰ ਸੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗ ਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ ਰਹਾਓ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣਨੀ ਸਣੈ ਜਾਏ ਤੈ ਸੋ ਜੈਸਾ ਕੰਡੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਦਮ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਿਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या। गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दाल दलगा, पौ जन मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस मान, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुम गा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटाऊं सद घूमगा।

मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेशया हर पेटिया राव निसंग रहाओ। मुंद एआणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नव लाया सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा शुद्ध ना होई आन दिन कर्म करै बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरै रंग कदे ना चढ़ै जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा मन।

प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोज आई, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरा मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खन अंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हो हर प्यारा टूं टूंडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेला हर पाई। सुही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए। गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने। सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई। मन मुख मुग्ध नर कोरा होए, जे सौ लोचे रंग न हो वै कोय। नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सुही महला चौथा, जे वाह रस रही अगाए। गुरमुख पीवे सही समाए, हर रस जन चाखो जे पाई। तौकत अंत साध लो भाई रहाओ। गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार। मन मुख हर रस चाखिया ना जाए, हों मैं करे बहुती मिलै सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती। लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे। हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका। मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए, जन नानक तिन को वंदन परसे। जे कृपा करे हर राय, सूही महला चौथा। तिनी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका, जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक पवे इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो। हर सेवक पाए निस्तारा, सुही महला चौथा। जिथे हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिदलया ना जाई। हर तन संचिय पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय। हर तन कित ना पाई, हर रतन का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक। हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई। हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हालत पलत हर तन की, भगता को मिली वडियाई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी जमदूत, किसे का गवाया ना जाई। हर तन का उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहेले पए, हथों छुड़क गया। अगे पलत सागत हर दरगे टोई ना पाई। इस हर तन का साहू हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सुही महला चौथा, जिसनो हर सो प्रसन्न होए। सो हर गुणा रवै, सो भगत सो परवान। तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ। सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो नेफर सब अगे।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो पावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाने

तू करता सब किछे आपे जाना, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सब के सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाना है, बुरा भला तू सब के सूझै, तुद पावै तवे बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जाणै, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए।

ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी विचहो मैं कार कमाई जिन किए तसै न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरै वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवै बख्स रहाओ सब जियो पिंड दिया तुदे आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करै से रोवै हर की वड्याई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक अंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतै गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास परम लोभ मोह माया विकार परम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिनसत नाही ना को आवै ना को जाही गुर पूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवां कीता लोड़ै।

तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ। जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारै कछु ना पाइयै, साच लगै ताह मैं जाइयै। जिसनो लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद पावै तायाणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सुही महला पंजवा, तन सोहागन जो प्रभु पछानै। मानै हुक्म तजै अभमानै, प्रेसे राती रलिया मानै। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लुकानी रहाओ। सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै। सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल ना पावै। फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै। बिनो करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहया भरपूर। जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवा। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी। कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ। सत सिंगार पो अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे। जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा, सेज विशाई सरदया पारा, नव रंग लाल सेज राम ने आया, जन नानक पिर तन मिर सुख पाया। सूही महला पंजवा, उम क्यों हियो मिलन प्रभताई, खोजित चरियो देखो प्रे जाई। सुनत सुंदे सरो प्रे गृह सेज विशाई, भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई। किन बिद हियरो धीरे निमानो, मिल साजन तुझ कुरबानो रहाओ। एका सेज विशी तन कंता, तन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो तन मतवंता, तन जागे जे पिर बोलंता। पही निरासी बहुत दिन लागे, देह दिसंतर मैं सगले चागे। खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिले इस पागे। भयो कृपाल सतसंग मिलाया, बूझी तप्त करै फिर पाया। सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया, कहो नानक गुर परम चुकाया। जै देखा तै फिर है भाई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई। रहाओ दूजा सूही महला पंजवा, क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन कहो हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगमे अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई।

कोट दास जाकै दरबारे निमख निमख वसै तिन नाले हौ किश नाही सब किश तेरा ओत पोत नानक संग बसेरा।

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवां, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा, जा कै सिमरन कछ भौ ना ब्यापै।

साध संग जन्म मरने वारी अमृत कथा सुन करने आधारी काम क्रोध लोभ तिजारी दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी कहो नानक कहो तत् बिचारी राम नाम जप पार उतारी सुही महला पंजवा लोभ मोहे मगने अपराधी करनहार की सेवना सादी पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लियो मोहे निर्गुणिया रे रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची दे मानुख्य अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सुही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त कौ जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किश कर जित छुटे परानी हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ घोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारा कछु न जाता रखे पोचार माटी का भांडा अत कुचील मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोहे बादा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनीजै डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै सूही महला पंजवा जीवत मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन इउं दुत्तर तरियै मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ एक बिना दूजा नहीं जानै घटघट अंतर पार ब्रह्म पिछानै जो किश करै सोई भल मानै आदि अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कै हृदय वसै मुरारी सूही महला पंजवा गुर परमेसर

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट न आवे, खात खर्चत सुख अंद विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सूही महला पंजवा, गुर पूरे जपे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई। पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप। जाल न सकै तीने ताप, निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे। नानक मांगै दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे।

जिस कृपा करे बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप तजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, घर का काज ना जा।

दर्शन कह लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवा, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवा, हर का संत प्राण तानु, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगलते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचो, बंदो बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया करो, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया। तहां आनंद करिया, न मरिया न जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसे आया कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओढ़

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरै बिल लाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौं वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई। जिन प्रभ के चरण पराते, मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई। भगता बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरै, जमता कै निर्णय आवै। जन्म जन्म

प्यास चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राए मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटै कतहूं काची दे आणी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तुही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हम बल जाई केसा का

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्यां इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसे ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबर है बक्से बक्षण हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होने गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुच्ची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया हौ जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाह कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आई है मिले तुझै रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखै आप देह सो पाई है तू देखै थापो थाप दर भी नाई है

आए सतगुर नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से न विछड़े दर सच्चे दे सन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुखी उपजे सच्ची भगत करेन सच वणंजै गुर शब्द स्यों लाह नाम लयेन सोइना रूपा पाप कर कर संचिया चले ना चल दया नाल विणना वै नाल न चल सी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हिरदय रखो संभाल एहो खर्चा खुट है गुरमुख निभ नाल ए मन मूलो भुलिया जस है पत गवाए एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमती सच ते आए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर सो रह समाए सो सहो मेरा रंगला रंगे सही सुभाए कामन रंग ता चढ़ै जा पिरकै अंक समाए चिरी विछुने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन नावे जन्म ना मरे नावे दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़े जे अंदन मिले रहन इस जग मैं विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है किद बिद मिले आ जाए गुर कै शब्द परम कटी है अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तन कै बलिहारण मन हर गुण सुधार वन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याय न रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूर्ब होवै लिखिया गुर पाणा मन लयन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वेखा लिया प्रभ आत ब्रह्म पछान सब ना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोह माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए सेवा सा प्रभाव सी जो प्रपाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सुही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करै ता सतगुर मेलै हर हर नाम ते आई रहाओ जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख पी तुझे ते आई जे भुख देहे ता इतही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आ

मैं तुझ ऊपर बहु मानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वे खाल एहा पाई मूं दातड़ी नित हिरदै रखां समाल पाव जुलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हूं साहो हाँ कह ना सका गुण तेरिया सहियां तऊ असंख मन्यो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देह दर्श रंग माणिया जय डिठे मन तीरी है किल विख वंजन दूरे सो क्यों विसर माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाए सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग न सह रहाओ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख ना पाए नमूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत बिचारिया नाम बिना सुख ना है सर पर हारिया आवे जाय अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते जिनको भय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया खोजै कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो राग सुही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अमावन डोसड़े हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दू एक चिड़ंदिया कौन जाने मेरा नाओ जियो जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी एह जियो से गुण मंजना यावनी हाँ कह जी दोस्त रेव जियो क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो एक तटोल ना अंबड़ा हो सतगुर बाणे ते रह जाओ जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा आस जियो हो एनी टोली पुली अस तिसकंत ना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहोरे क्या मोह देसी अगै जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो तै सह नालो मुती अस दुखां को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी राज जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू मंत्र साबाह जियो पाणे तख्त वडाईया पाणे पीखो दास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल आकाश जियो पाणे पवजल लंगिया पाणे मंज प्रयास जियो पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो पाणे सह पिहावला यावन जान मुयास जियो तू सौ अगमा तोलवा हों कह कह टह पैया जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुर शब्दी सह पाया सच नानक की अरदास जियो
सुही महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस्यो।

चल कै मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। इयों पावै हर दरसावड़ा नै लगे तत्ती वाओ जियो, हाँ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुर नानक किया पसाओ जियो, मैं बहुड़ना तृष्णा पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आगाए जियो। जो गुर दिसै सिखड़ा तिस निम निम लागौ पाए जियो। राग सूही संत महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पर जोबर मैं मत पे यड़ै कर पाहुनी बलराम जियो। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो। गुण सार ना जानी परम पुलाणी जो बनबाद गवाया, वार कर दर दर्शन नहीं जाता फिरका सहज ना पाया। सतगुर पूछना मा

मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो, रव रहया जुग चारो त्रिपवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिपवन कंतर वै सोहागण अवगणवंती दूरे, जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहा परपूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागणो रांडना मैं ले वेसे, नानक मैं वरसा चा पावे जो जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम्पी वहियां साहुरे बलराम जियो, साहा हुक्मर जाए सो न टले जो प्रभ करे बलराम जियो। किरत पया करते कर पाया मेट न सके कोई, जानी ना नरने केवल रव रहा त्यो लोई। माए निरासी होए विशुन्नी बाली बाले हेते, नानक साच शब्द सुख महली गुरचरणी प्रभ चेते। बाबल दितड़ी दूर ना आवे कर पेई है बलराम जियो, रैसी वेखा दूर पिरावी कर सोही है बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदाने, संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए, नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए। राग सुही महला पहला शंत घर दूजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद हम कर साजन आए। साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जैसे ती मन लाया। आन दिन मेल पाया मन मानिया कर मंदिर सोहाए, पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम कर साजन आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभु पावो सोहे लड़ा जुग चारे। अपने कर आया थान सुहाया कार्य शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत् विचारो। जंत पेख तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारो, तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोहया तन मने अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा अगम्या पारा तुद बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए। काल बिकाल पहे देवाने मन राख्या गुर ठाए, नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए। राग सुही महला पहला कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। आवो सज्जना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आपन रह खड़ी तक।

अवगण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाता है। तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायाड़ा बल लड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रया ने दूरी राम। प्रभ दूर ना होई कटकट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिस दी वड़ियाई। अमरिया डोलिया मोहलिया पारा गुरपुर सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है। फिर उचरड़ी है माड़ी है तिहलोवा सिर ताजा राम हम बिसम पई देख गुणा अनहद शब्दया गाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो। पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जासी नानक गुरमुखिया पछाणे प्रभ जैसे अवनासी। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला कर चौथा जिन किया तिन देखिया जगत हंदड़े लाया दान तेरे कर चानना तन चांदी पाया। चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुणजन लाड़े नाल सोहै परख मोहनिया लया। विवाह होवा सोभ सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जगत हंदड़े लाया। हम बलिहारी साजना मीता अवरीता एह तन जिन स्यो गाडिया मन लियड़ा दीता। लिया ता दिया मान जिन स्यो से सज्जन क्यों विसरै जिन दिस आया होहे रलियां जी से ती गैर है। सगल

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्व रया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सत गुरबाणा। ऐसा गुरवट भाग

हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहड़ जोड़ ना आई है, गुरचरणी लागे परंपाव भागे, मन चंदिया फल पाई है, हर गुण नित गाए नाम ते आए, फिर सोग नाही संताप, नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस प्रताप, हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम, परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी, जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वह जाई राम, अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए, पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई, सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम, हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई, परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखे दर्श तेरा, कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम, सुन सुन एह मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम, कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना, हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहि ध्याना, काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुरमत नासी, कहो नानक प्रभु कृपा कीजै हर गुण सुनिए अविनासी, करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम, पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग, एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम, एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकर दीन दयाला, मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा, सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावै राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावै राम, हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी कथ कहानी, भला संजोग

जिस तू मिलै सो तुद मिलै, सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह विए सूहा सब संसार है, जिंदुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत न पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजै पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजै परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ, सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया, ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

रजाई, जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुझते, तेरी सब असनाई, तेरा अंतना जाना मेरे साहेब, मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुद भावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहु बेगाना, पौका स्तनताई, भगतहीण नाक जे होएगा, ता खसमै नाओ ना जाई, बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेसकल अंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवा,

जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवरना सूझे गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने। मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मन मुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया। दूजा पाव ना दे लिव लागणो, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तैं दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दया पदाता, क्या ए जंत विचारे। मुक्त बंद सब तुते होए, ऐसा आख वखाणे। गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चा आप सवारे। परम पुलाणे से मन मुख कहिए, नारोवार ना पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माहि निस्तारे, नानक भाग होवे जिस मस्तक। काले मार बिदारे, बिलावल महला तीजा। अतुल क्यों तो लिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए। तिसते दूजा नाही कोए, तिसदी कीमत किकू होए। गुर प्रसाद वसै मन आए, ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए। आपे तोले

सगल सिंगार करे नहीं पावै, जां होए कृपाल तां गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिसे आया साध, जो गुंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए। दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ, सबनी थाई रव्या आप। आद जुगाद जाकावड़ प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप। गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे। सब सुख पाए सदगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ रखवाले। जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रतपाले। बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे। अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी सरनाई। कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए। मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ, प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़। हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे। जाके संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मंतन आधार। बिसरत नाम होव तनशार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज। हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत। बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत। नानक भगतन कै कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा। कर दूजा यानड़िए कै कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक। अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुरे आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिली है जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काट है पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर

गुण गावो नित राम के, ए अवखद जोग आए बसो कर देश में, एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा, काहू संग न चल ही माया जंजाल, ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल, रहाओ अह बुद्ध कौ बिनसना ए तुरकी ढाल, बोजोनी जन्म मरै बिखिया बिकराल, सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सह समाधानंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन, रहाओ जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न ना थिया, जां का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख बिचार, से सतक गिरि जोगी तज गए कर बार, रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार, कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल सह सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेव्या से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याइया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करा गो, जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिले त्यागो, रहाओ करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमक सुहागो, पंच संग गुर ते छुट्टे दोख हर रागो, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो, सरण सुहागन आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हो वही न लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए, सह समाना भीतरे छोड़िया न जाए, रहाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतया गान्या गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे, रहाओ हम अवगन करें असंख नीत तुम निर्गुण दा तारे, दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देवो सबके दया तार हम अकृत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो नैचित खसमारे, तुइ ते बाहर किश नहीं पव कट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष ना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे सुख होए घना मन सोई गई है, कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी, सब अवगन हमा, रहाओ ज्यो तुम

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में, मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम्बा रंगला, काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया, श्रम कर ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भुज कीता अंदर।

प्रव्यग्म अपार वस्तु कमावत सब सुखी किशु न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करै सतथान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बिलावल महला पंजवा हर हर हर हरा दिया होइ आरोग रामचंद की लष्ट का जिन मार आरोग रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचे भोग साध संगत कह वारण मिलया संयोग जिस सिमरत सुख पाई है बिन सहबे होग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवरे पाप सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आरा दया सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाओ बहा पकड़ प्रभ का डेया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चित वै साध जान सो लेता मान रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रव्याप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागे नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागे तंत मंत न जो है तित ताख न लागे रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागे बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कह जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना

गावत प्रभु नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जोसदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवनी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए अभमान खोए खोए खोए खोई हूं। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार। जो तुम करहो सोई पल हमर, पेख नानक सुख चरणार। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अघाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसनाया लाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पय जौ पेखियो कहन न जाए वड्याई। मगन पय ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जहां से ओ राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बखैठ गौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवार हो पावक तले जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मने अधारो। चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम खला गो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवी सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न सक एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभु तुह सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभु, गुरु नानक कहो बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधिया कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगती त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, उतकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काय ते छूट परी, रहाओ सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना साको, गुरपुर है मेरी उल्ट धरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे।

बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कहो तुही पछान, जो जियन मैं होता, अरे मन काए कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पए मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकूब मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय अनंदा मिटे आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ।

अनक भगत अनक जन तारे सिमरै अनक मुनि अंदले टेक निरतन तन पायो प्रभ नानक अनक गुनी। राग बिलावल महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मोहन नींद ना आवै हावै हार कजर बस्तरिया पर नकीने ओडिनी ओडिनी ओडिनी कब कर आवै री रहाओ शरण सुहागन चरण शीस तर लालन मोए मिलावो कब कर आवै री सुनो सहेरी मिलन बात कहो सगरो अहं मिटावो तव कर ही लालन पावो। तब रस मंगल गुण गावो आनंद रूप ते आवो नानक द्वारे आयो तव मैं लालन पायो री। मोहन रूप दिखावै अमोनी सुहावै सब मेरी दिखा बुझानी अब मैं सही समानी मीठी परे कहानी मोहन लालन पायो री रहाओ दूजा। बिलावल महला पंजवा मोरी अहं जाए दर्शन पावत है अराचो नाथ ही सहाई संतना अवचरण गहे रहाओ। आहे मन अवर ना पावै चरनावै चरनावै उलझो अल मकरंद कमल ज्यो अनरस नहीं चाहै एक हरला है अंते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस फूटी है संग साधु उल्टी है। अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण है राग बिलावल महला नावा दुपदे को ओंकार सतगुर प्रसाद। दुख हरता हर नाम पछानो अजा मलगन का जे सिमरत मुक्त भय जी जानो रहाओ। गज की त्रास मिटीशन हूं मैं जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत त्रू बारक भजन माहे लपटानो। अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो नानक कहत भगत रक्षक हर निकट ताहे तुम मानो। बिलावल महला नावा हर के नाम बिना दुख पावै भगत बिना सहसा ने चूकै गुरे भेद बतावै रहाओ। कहां पयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवै जोग जग ने फलते मानो जो प्रभ जस बिसरावै। मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कौ नानक है बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै। बिलावल महला नावा जामै पजन राम को नाही ते नर जन्म्या कार्थ खोया यह रखो मन माही रहाओ। तीर्थ करै व्रत फुन राखै न मनुआ बस जाको नेफल तरम ताहे तुम मानो साच कहत मैं या कहो। जैसे पाहुन जल मैं राखियो भेदै नाहे तह पानी तैसे ही तुम ताहे पछानो भगतहीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुरजै भेद बतावै कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख विर लाबू जै कोई विण पै पै भगत न होई सब रते सदा सुखोई। ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ। ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त ना होई। ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई। मनमुख कथनी है पर रहत ना होई नाम भूले थाओ ना कोई। मन माया बंदेओ सरजाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो आंजै सो दिसै काल कार्ज सिद्ध उरदै समाल। सो ज्ञानी जिन सब दिल विलाई मनमुख हो मैं पत गवाई आपे करतै भगत कराई। गुरमुख आपे देवड़े आई रैणा दाई निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कशोत। वेद पुकारै भगत स्रोत सुन सुन मानै वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ाम। गुरमुख सात उत्तम करावं मनमुख जोनी दुख सहावं
ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਇਕ ਨਾਮ ਸਾਮੰ ਮੰਨੇ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਪਤ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਕਹੋ ਭਾਵੈ ਮਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਬਿਲਾ

तन तन कलातो सब देख अब महन्ना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ, कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुर्मत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्या आई जाइय, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दरस होए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठे मान, बिन नामै पाज रहग निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाय वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर कर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेविय अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभिमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां कर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरो दस द्वार हैं जाके, अहन सो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जमजा गाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जाणै, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਪਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤ ਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵਿਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋਵੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਉ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਜੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर पवन करै बुझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत न आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण भरै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वै सो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिलै साधु जन संगत, धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वच्छल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुरबचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाणै, अवर के जाणै को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हौ आकल बिकल पई गुर देखे। हौ लोट पोट होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरे आगे। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आण संदेसा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया, मस्त काट देओ चरणा तल। जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै। गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वच्छल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आग्या जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश की जै, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया। दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का। खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी। जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मंतन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख भुलाने। मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमलै अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर ना पावै। बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै। हौ तिस विटो बल बल घुम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकर, महल ना पावै मनमुख परमैया। गुर गुर कर तो शरण जे आवै, प्रभ आए मिले।

पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिनको ठागर कृपा तारी। बहा पकर नानक कढ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमलियाधार, हौं जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कतै ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख अनंद पूर्ण साद। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ।

एक में एक अंकार निराला, हमारा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख दिखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीश है, गुर के शब्द महल कर दीस है रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवरना दूजा सिरजन हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथे उपाय चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाय, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगरा ते एक मरतूर, एक दर कर साचै देख दूर, झूठे कौ नाही पत नाओ, कबो न सुचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त न होए, तव छूटै जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तौ पत पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच निशाने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनुआ रह लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगादी है पी होग, ओ परंपर करना जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै, बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यों तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साज रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वे को वेका, फलो हर किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, छूटे गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवधूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस्खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जा तो भीतर आने, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन पवन मैं एको जाना है, सब सुत संयम साच पछाण है, तेर सतरवर समुद किनार है, अमृत मूल शिखर लिवतार है, डर डर मरै ना बूढ़ कोए, निडर बूढ मरै पत खोए, डर मैं घर घर मैं डर जाना, तख्त निवास सच मन पाण, चौदस चौथे थावै लै पावै, राजस तामस सतकाल समावै, ससियर कै कर सूर समावै, जो जूत की कीमत पावै, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत तिहु लोई, कर कर वेखै करता सोई, गुरते दिसै सो तिसहि माहे, मनमुख पूले आवै जाए, घर दर थाप थिरथान सुहावै, आप पछाणै जां सतगुर पावै, जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटे खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल ते रह उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा, बिलावल महला तीजा वार सत, कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई, आपे वरतै वरना कोई, ओत पोत।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैन न आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

सर्व सुखानिद पियो, सुख सागर प्रपेटे है, नानक सुखी होत एहो जियो। संत सुख सागर प्रपाई है, जब होवे भागो राम, मानन मान वजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम, नानक पौ सरनाई राम राय, थिर होए सुहागो राम। सो प्रभ तज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे अज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत पाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरै बल गईये, दो चारण रसना राम। प्रभ भगत वछलनै सेवही, काया काक ग्रसना राम। ब्रह्म ही दुख न जानही, कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना, बिष्टाक्रम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे, होय मिल बैरागन राम। चंदन चीर सुगंध रसा, हमें बिख्यागन राम। ई तूत ने डोली है, हर सेवा जगन राम। नानक जिन प्रपाया अपना, सा अटल सुहागन राम। बिलावल महला पंजवा, हर खोजो वड भागियो, मिल साधु संगे राम। गुण गोविंद सद गाई है, पार ब्रह्म कै रंगे राम। सो प्रभ सद ही सेवी है, पाइए फल मंगे राम। नानक प्रभ सरनागति, जप अंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै, जिन सब किश दीना राम। वड भागी मेला वड़ा, गुरमुख पिर चीना राम। बाहां पकड़ो तमते काढ़िया, कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै, शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको, प्रभ अंतर जामी राम। सिमर सिमर नारायण पै पार ग्रामी राम। गुण गावत गोविंद के, सब इच्छ पुजामी राम। नानक उदरे जप हरे, सबहू का स्वामी राम। रस पिन अड़े अपने राम संगे, से लोइन नीके राम। प्रपेक्त इच्छा पुनिया, मिल साजन जी के राम। अमृत रस हर पाया, बिख्या रस फीके राम। नानक जल जलै समाया, ज्योति ज्योत मीके राम। बिलावल की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, हर उत्तम हर प्रभ गाव्या, करनाथ बिलावल राग। उपदेश गुरु सुन मन्या, तुरमस्तक पूरा पाग। सब दिन सरैन गुण

नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी है चूकै मन अभमान पौड़ी। तू हर प्रभ आप गम है सब तो दे पाया, तू आपे वरदा सब जग सवाया। तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया, हर त्यावो भगतो दिन सरात अंतले छाया। जिन सेव्या तिन सुख पाया, हर नाम समाया श्लोक महला तीजा। दूजे पाए बिलावल ना हो वई, मन मुखथाए ना पाए पाखंड भगत ना हो वई, पार ब्रह्म ना पाया जाए। मन अठ कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए, नानक गुरमुख आप विचारी है विचों आप गवाए। आपे आप पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म वस्या मन आए। जमण मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए, महला तीजा। बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सिउं लिवलाए, जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रहे समाए। सदा बिलावल आनंद है जे चलै सतगुर पाए, सतसंगति बह पाओ कर सदा हर के गुण गाए। नानक से जन सोहणे जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी। सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर, सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद कर। हर भगतां का मेली सरबत सो निसल जन टंग तार, हर सब ना का है खसम सो भगत जन चित कर। तुद अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै चाड़, श्लोक महला तीजा।

ज्योति ज्योत में लाए इस जुग में, विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाए। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द ना लगो पाओ, हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमावंदे फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्लै पाए पौड़ी। सब वड्याइया हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। गोहज गल जी की चै, सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे, सब भुख लै जाई है, जिस पूर्व होवै लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं, मेरा प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है, जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोख होवा, सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सचो दैद पसरिया गुर कै सह सुवाए। नानक जिन अंदर सच है, से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नदर करे, मानसे देवते पए, सच्ची भगत जिस दे। हाँ मैं मार मिलायन, गुर कै शब्द सोचे, नानक सह जे मिल रहे, नाम वड्याई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वड्याई, हर करतै आप वधाई। सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, ओना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन, ओना प्राया भला ना सुखाई। क्या होवै किसी दी, क्या होवै किसी की चख मारी, जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावै, सा नित नित चढ़ै सवाई, सब चख चख मरै लोकाई। सलोक महला तीजा, त्रिग एह आसा दूजे भाव की, जो मोहे माया चित लाए। हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाए।

तहि जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुन उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बस है, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ताक है, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेख है, कुटल गांठ

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर काहू की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश नाम वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छिड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले बखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जो तुद उपकर दुख सुखासा तिसका प्रभासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप, तन अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रभासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरतो सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिन के चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। ते जन की वडियाई हर आ वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुड़ना। जन नानक हर दानिक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पातशाह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी। तिस जेवड़े अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंभ कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे। जित हर दरगह पावै तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

निमाने कहो जो दे तो मान, सगल भूखे को करता दान, गर्भ कोर मैं रखन हार, ते ठाकर कहो सदा नमस्कार। ऐसो प्रभ मन माहे ते आए, काटे आव काट जत कत सहाय रहाओ। एक रंक राव जा कै एक समान, कीट हस्त सगल पुराण, बियो पूछना मसलत तरै, जोगश करै सो आपे करै। जा का अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, घट घट घट सब घट आधार। नाम रंग भगत पै लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागे पाए। गुंड महला पंजवा, जा कै संग एहो मन निर्मल, जा कै संग हर हर सिमरन, जा कै संग किल बिख होहे नास, जा कै संग हृदय प्रगास। से संतन हर के मेरे मीत, केवल नाम गाइए जा कै नीत। रहाओ जा कै मंत्र हर हर मन वसै, जा कै उपदेश परम पवन सै, जा कै कीर्त निर्मल सार, जा कीरेन बांछे संसार। कोट पतत जा

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई, गुरप्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करना जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाईए पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिट दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योत पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दे ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाईए वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ

के मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्वनिधान तेरी दृष्टि मा है, नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड

नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राखे राखण हार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लो मोह ना पो है, साध संग जप निरंकार, निंद कै मोह लागे शार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत ना है, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन में रुलता खाकू नाल, हैपी साचा होवनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना हो गुडा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला, ना हो बिनसै ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए, ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग, ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परंपर होता आया, पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया, अशाला शेदा भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ, संतन कै संग राम गुन गाओ, संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे लवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए, सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर। राग गौ

अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हार जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा प्रखोतम, कट बिनसै गगन न जाए ले।

दिन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्व निरंतर सोए रे। कहे कबीर रा राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गोंड

हरे महावत तुझ जारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह ते आन, वा कर दे बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

संसार के अंचल लरी गोंड ग्रह शोभा जा कहरे नाहे आवत पैया खुदे जाहे वाकै अंतर नहीं संतोख बिन सोहागन लागे दोख तन सोहागन महापवीत तपेत पीसर डोले चीत रहाओ सोहागन कृपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठांडी दरबार शरण तेरी मोको निस्तार सोहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जव लग प्राण तव लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सोहागन पवन त्रैलिया दस अठ पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सोहागन उर्वार ना पार पांच नारद कै संग बेदवार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै ना बिना कैसे पार उतरै कुंभ बिना जल ना टीकावै साधु बिन ऐसे अवगत जावै रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है सूत बिना कैसे मणि परोई है कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है साधु बिन तैसे अवगत जाई है जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपरे धोई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटै मन कूटै तो जमते छूटै कुट कुट मन कसवट्टी लावै सो कूटन मुक्त बहु पावै कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाओ नाचन सोए जो मन स्यो नाचै झूठ ना पतिया पर चै साचै इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सो दै पांच पलीतै कहो प्रबोधै नव नायक की भगत पछानै सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात ना करै इंद्री कै जतन नाम उचरै कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरदेव अत रूप बिचखन गोंड धन गोपाल धन गुरदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन वे संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारिंग पानी आदि पुरखते होए अनाद जपिए नाम अन्न कै साध रहाओ जपिए नाम जपिए अन्न अंबे का संग निका वन अन्न बाहर जो नर होवै तीन पवन मैं अपनी खोवै छोड़ अन्न करे पाखंड ना सोहागण ना ओहे रंड जग मैं

अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सिवा सख्त संवादंग मन छोड़ छोड़ सगल भेदंग सिमर सिमर गोबिंदंग भज नामा तस पव सिंदंग गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डारत हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेव कौसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार।

दास अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै साधका निंदक कै

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे तसे त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया सुमाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रहै,

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पितर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिया जीवत आयो मरिया रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द साख।

गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरस बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखां ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे। रहाओ भिखिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया। रहाओ सिद्ध साधक योगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइए एत तन कर तुलहा लंगे जेत। अंतर पाहे तुसे तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए। रहाओ

रामकली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझै बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाण, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन में रहण रहण में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महल

दाते हर संत पगी ले पावै। हौ काटो काट बाढ़ सिर रखो जित नानक संत चढ़ आवै।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं।

अगली किश खबर ना पाई, रोवन हार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध। एह तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नह बिन सैब नासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजवां, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारे ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवारो रे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। दुतिया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक ऐ सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहुविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक ऐ मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इउं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रै रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहनाई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवां करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय निकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख पूर्ण पूर रहा प्रभ एक। रत्न मोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु आप पछान। पी अमृत संतन प्रसाद वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ

कोट प्रगास न दिसै अंधेरा, पशु प्रीत का संग रचै जिसने बुझावै सो कित बिद बुझै, जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान, बिगस बिगस अपना प्रभ गावै नानक तिन जम नेण न आवै, राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित, हर तन रास निरास ए बित, काटी बंध हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए, बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ।

हट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कबो न मिसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदापुर रामकली महल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पहो भागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवेहर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास रामकली महला पंजवा मेहमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर वखाने रहाओ संकरा नहीं जाने पेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने मर्म सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपना रंग करता केल आप बिछोरा आपे मेल एक परमे एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप नानक का प्रभ आपे आप रामकली महला पंजवा किशु काजना कियो जान सुरत मत नाही किश ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किशु ना जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर ना कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगंत जी का दाता जिसे जनाम है तिन तू जाता जो उपायो तिस तेरी आस सगला राध है प्रभ गुणतास नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहिब मेरा मेहरबान रामकली महला पंजवा रखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल सगल अराधय जंत मिलिय प्रभ गुर मिलमंत जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे पार सुमत सार।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरै नानक शिक्षा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवां मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंतिम त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गोसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

चक्कर पे लो, हर चरण कमलो सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साई तना, रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे, काम क्रोध मसद ही चूरे, करे बेकार जिया रे कह ताई, गाफल संगनत सुवा जाई, तरत तोह अनक शर जान, कौडी कौडी कौ खाक सिर शान, जिन दिया तसेरा चेतै मूल, मिथ्या लोभना उतरै सूल, पार ब्रह्म जप हे दयाल, इह मन होवा सादरवाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै साज समाए, राम कली महला पंजवा, राजा राम की सरनाए, निरपो पए गोविंद गुण गावतो, साध संग दुख जाए रहाओ, जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर धरै, सो दासां देसा काहे करै, जन मरण की चूकी कान, पूरे गुरु उपर कुर्बान, गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो पवजल तरै, अमृत पीवाओ साध प्यारे, मुखी उजर साचै दरबारे, अंध करो तज सगल बेकार, नानक हर जप उतरो पार, राम कली महला पंजवा, ईंदन ते बै संतर भागै, माटी कौ जल दै दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश, कटमै सिंध की ओ प्रगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमखना बिसरै जी, भगतन कै आठ

सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। रामकली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखै ठगौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेख धोए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक पाव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा होवा आप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

दुर्मत सगल बिनासै, राम भगत मन पीजै रहाओ। मन माया मैं उर्ज रहो है, बुझै न कछ ज्ञाना, कौन नाम जग जा कै सिमरै, पावै पंडरबाना। पय दयाल कृपाल संत जानो, तब ए बात बताई, सर्व धर्म मानो ते किए, जे प्रभ कीर्त गाई। राम नाम नर निसबासर मैं, निमख एक उर धार है, जम को त्रास मिटै, नानक तेह अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नावा, प्राणी नारायण सुध लेहे, छिन छिन औध कटै निसबासर।

बिरद पायो अजहू नहीं समझ कौन कुमत उर जाना। मानस जन्म दियो जे ठाकर सो तै क्यों बिसरायो। मुक्त हो तो नर जा कै समरै निमखना ता को गायो। माया को मद कहां करत है संग न कहूं जाई। नानक कहे तो चेत चिंता मन होए है अंत सहाई। हराम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़ै से तारे सोई दियर तप्त रहै। सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाव कैसे। जीवन तलब निवार होवै प्रवाणा करै तिंगाणा कल लखण विचार। रहाओ कितै देस ना आया सुनिया तीर्थ पास ना बैठा। दाता दान करे तह नाही महलो सार ना बैठा। जे को सत करे सो छीजै तब कर तप न होई। जे को नौ ले बदनामी कल के लखण एई। जिस सिकदारी तिसे खुवारी चाकर के हे डरना। जा सिकदार पवे जंजीरी ता चाकर हथो मरना। आह गुणा कले आई है तेह जो केरा रहा तपावस। जे गुण देह ता पाई है रहाओ। कल कल वाली सरा निबेड़ी काजी कृष्णा होवा। बाणी ब्रह्मा बेदा थरबण करनी कीर्त लहया। पातविण पूजा सतविण संजम जतविण काहे जनेऊ। नावो धोवो तिलक चढ़ावो सोचविण सोच ना होई। कल प्रमाण कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण। नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान। नानक नाम मिलै वड्याई एदू उपर कर्म नहीं। जेकर होंदै मंगन जाइए फिर ओ लामा मिलै तही। राम कली महला पहला जग पर बोधै मड़ी बधावै। आसन त्याग कहे सच पावै। ममता मोह कामण हितकारी ना उदूती ना संसारी।

क्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम डंड। फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जति कहावै, माई मांग तो त्रै लोभ आवै। निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ। अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेहवा इंद्री साध लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना। त्रिबद लोगा त्रिबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ निद तू करना जोग, थापो थापे करे सोहोग। जत सत संजम सच सोचीत, नानक जोगी त्रि पवन मीत, रामकली महला पहला। खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तोने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सचनाम पतीना। प्राणी राम पग सुख पाई है, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाई है रहाओ। माया मोह विवर्ज समाए, सदगुर पेटा मिल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कही रा, तितराता मेरा मन तीरा।

प्रभ की जय। राम कली महल्ला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभ ते होई, जुगे जुगंतर साहेब साहे सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तनी सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, ना बिसार पचाया अवमान। नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलै पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो सुभाओ, तुम ते उपजो भक्ति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाओ। हाँ मैं गर्व जाए मन पीना, झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं करबार, नानक गुरमुख तत् विचार। राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पाया, तन तन देख तो गर्भ गया, कनक काम नीसो हेत वधाए, की नाम विसार है परम गया। रहाओ जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पया, पुन दान इस नान ना संयम, साध संगत बिन बाज जया, लालच लागे नाम बिसारे हो, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गहे मारे, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुर शब्द ना गद पत पावे, राम नाम बिन नरक गया, खिर मैं वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया, एत्युत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया, करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया, हाँ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवत देखे, सागत मानो अवमान पाया, जिसका हो तान तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया, अंत काल के साथ ना चल, जो दी सह सब्त सह मया, आद पुरख परंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गिर असराल पया, देख कुटुंब माया गृह मंदर, साकत जंजाल पराल पया, जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो किश करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिने हो चाखिया राम रसायण, तिनकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हर सोग ते बिरगत पया, आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया। राम कली दखनी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया, साज शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना,
ਅਹਿਨਸ ਰਹਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚੇ ਦੇਖ ਪਤੀਣਾ ਰਹਾਉ। ਰਹਿ ਗਗਨਪੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮੈ ਸੁਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗੀਣਾ ਸਤ ਬੰਦ ਕੁਪੀਨ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਰਸੀਣਾ। ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਜਿਨ ਰਚ ਰਾਚੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪਤੀਣਾ। ਏਕ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮੈਂ ਏਕਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ। ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਸੱਚ ਮਹਿਲੀ ਬੈਠੇ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਮੋਹੇ ਗਿਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਟ ਘਟ ਕਿੰਗਰੀ ਵਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਿਖਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਓ ਹਠ ਹਸਤ ਮੜੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਤਰਨ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੀ ਸੰਤੋ ਰਹਾਓ। ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਖੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨੈ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਘਟ ਘਟ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ। ਪਰਪੰਚ ਬੇਣ ਤਹੀ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਰ ਪਰ ਜਾਰੀ। ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲ ਅਹਿਨਸ ਦੀਪਕ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰੀ। ਰਵ ਸਸ ਲੋਕੇ ਉਹ ਤਨ ਕਿੰਗਰੀ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਰੀ। ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਅਵਧੂ ਅਲਖ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਘਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹੇ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ। ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇਹ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ

पंडी हुक्म बुझै सो जोगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सो जी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिस ते उपजै तिस ते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई भरम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथै पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ ना पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कहै किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सहि समाना बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुर्लंभ है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूज ना होवी भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै सोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल शब्दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कटे अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी।

अवर न कर न जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरे वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई।

मोहे दीन हर हर हर त्याया, किन्ही सिद्ध बहुत चेट कलाए, किन्ही भेख बहुत हट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित,

कोई करे आचार सुकरणी मोहे दीन हर हर हर सरणी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नाम है ओ मन ना प्रबोधे कहो नानक जो साध संग पाया बूझी तृष्णा महासीत लाया हराम कली महला पंजवा इस पानी ते जंतु करया माटी काले देहरा करया उगत जोत लै सुरत परीखिया मात गर्व मैं जंतु राखिया राखण हार समार जना सगले छोड़ विचार मना रहाओ जिन दिए तुद बाब महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बंता यार मीता तिस ठाकर कहो रख लिहो चीता जिन दिया तुद पवनिया मोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला

ज्यो पाव को संग सीत को नास, ऐसे प्राहितो संत संग बिनास। ज्यो साबनो कापर उज्जल होत, नाम जबतो सब ब्रह्म पौखोत। ज्यो चकवी सूरज की आस, ज्यो चात्रक बूंद की प्यास। ज्यो कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ताय आए चीत। दया तारी तिन तारनहार, बंधन ते होई छुटकार। सब था

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जनी ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको अंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरण आई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुर सच लाए।

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चल है, जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावहे। जिसनों कथा सुनाए अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब, जो पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्ला, गली किनै ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सवाईया। कहिंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है, कित संजम तोता जाए। मन तोहो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाए।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचै हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरहां तुद पावां, जा तू मेलै तां तुजै समावां। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

आवा गौण मिटै गुरसबदी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जम की कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमै उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम

ना किश बीजे ना उगवै जो बक्से सो खाए। अंबै सेती अंब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाए। नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए। लोक के वेखे बपड़ा जिसनो सोजी ना आए। जिस वेखा ले सो वेखे जिस वसिया मन माहे। महला तीजा मन मुख दुख का खेत है। दुख बीजे दुख खाए दुख विच जमे दुख मरे होमै करत विहाए। आवन जान ना सुजई अंधा अंध कुमाए। जो देवै तिसै ना जानई दित्ते को लपटाए। नानक पूर्व लिखिया कमावना अवरना करना जाए। महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो बिबेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जै देखा तैं सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन कौ जाई। सब किश आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजिया नु कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई। आपे वेखै सुने आप गुर शब्द ते आई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।

अभ्या गते है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है कर्मी पल्ले पाए नानक नौ निद पाई है जे चले तसैर जाए महला तीजा सहजे सदगुरना सेवयो विच होमै जन्म बिनास रसना हरसना चखियो कमला होयो परगास बिख खादी मन मुख मुआ माया मोहे विनास इक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दसन दास ता अंदन सेवा करे सतगुरु की कबै न छोड़ै पास ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै तिव हर गुणतास पौड़ी शति जोग वारसा आपे गणत कीनी आपे सिरट सब साजियां नो आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियान पापुन गणत गणिनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतिनी सब आपे आप वरतदा आपे बख्स मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला।

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाप जे सम

निरंकार जो रहे समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखन है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख, दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानकिया खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पवसन या किया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवै घर आया, अजय सो रोवै पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवै राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवै दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवै पांडव पए मजूर। जिनकै स्वामी रहत है दूर, रोवै जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी पया, रोवै शेख मसाइक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवै राजे कन पढ़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवै किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवै ज्ञान गवाए, बाली रोवै नाहे पतार। नानक दुखिया सब

करे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है। महला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल मनुआ अंधना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत्या चेत है चिंता बद्धा जाए नदर करे जे अपनी ता आपे लय मिलाए पौड़ी। से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता सब किश कर ही माहे है वडभागी लीता। अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता आपे मेल मिलाया नू आपे दे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला। वेल पिंजाया कत मुनाया कट कुट कर खुंब चढ़ाया लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई तागा सीवै। इयों पत पाटी सिपती सीपै नानक जीवत जीवै हुए पुराना कपड़ पाटै सुई तागा गंडै। माहो पख केहो चलै नाही कड़ी मोहत किश हंडै सच पुराना होवै नाही सीता कदे ना पाटै। नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापै। महला पहला सच की काती सच सब सार काट तो तिसकी अप्रयापार सबदे सान रखाई लाए गुण की थेकै विच समाए। तिसदा कुठा होवै सेख लोहू लब निकथा वेख होए हलाल लगे हक जाए नानक दर्दी दर समाए। महला पहला कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार गर्भ ना की जय नानका मत सिर आवै पार पौड़ी। सो सत संगत शब्द मिलै जो गुरमुख चलै सच ते आयन से सचे जनहार खर्च तन पलै। भगत सोहन गुण गावंदे गुरमतिया चलै रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भलै आपे मिल मिलाइंदा आपे दे वड़ियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा आसा अंदर सब को कोय निराशा होए नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए। महला तीजा ना किश आसा हथ है क्यों निराशा होए क्या करे ए बपड़ी जा पुलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दातार नि चले हो तन सास सास आराधे निर्मल सोए जानो अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहया सरबत नानक बल जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै एवै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। बगला काग न रही सरवर जे होवै अत सियाणा ओना रिजक न पयो उथै ओना होरो खाणा। सच कमाणै सचो पाईऐ कूड़ै कूड़ा माणा नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पै परवाणा। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे नानक सोई सेवियै सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवियै जित सेवै दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवै मन सुख वसै आए पौड़ी। आपे आप वरतदा आप ताड़ी लाइयन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति आईयन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे नाए लाइयन। नानक नाम ती आई है सच्ची वड़े आई वाह वाह सच्चे पातशाह।

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपूरे देखा लिया विणना मैं सबाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सद ही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरे मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियान सब रखे कुटुंबै नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहार जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै हाँ सदबल्या।

व्यापया दुर्मत कबुद्ध कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा। सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा। अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा। आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा। पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई। जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई। जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई। जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई। श्लोक महला पंजवां कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

माधाना पर्वत कर नेत्र बासर माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकाल्योन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहणे तर उन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्ता लहणा टिक्योन फेर वसाया फेर आण सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विनाहे मानसा ज्यो पानी बूर वरे अदर गै गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौनिद नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़ै दिसै मात लोक तो सुजै दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिऊ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कत्या कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान चौदह

तूर अनहद बजय सदा भरपूर, ऐसा सिमरण कर मन माहे, बिन सिमरण मुक्त कत नाहे रहाओ, जे सिमरण नाही नरकार, मुक्त करे उतरे बहु पार, नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा यावन नाहे, जे सिमरण करे तू केल, दीपक बांध धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेका डीले मार, जे सिमरण तेरी गत होए, सो सिमरण रख कंठ पर होए, सो सिमरण कर नहीं राखो तार, गुर प्रसादी उतरै पार, जे सिमरण नाही तोहे कान, मंदिर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरण तू अंदन पियो, जे सिमरण तेरी जाए बलाए, जे सिमरण तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरण सतगुर ते पाइयै, सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरण रस भोग, हर सिमरण पाइयै संजोग, जे सिमरण नाही तुझ पार, सो सिमरण राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत, राम करी कर दूजा बाणी, कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्त गुर अनल बुझाया, जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मानो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ, उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदिया ले चक्र पयंगा, पेटिया ले राय नसंगा, चूकिया ले मोह मयासा, सस्कीनो सूर गिरासा, जब कुंभक भरपुर लीणा, तह बाजे अनहद बीणा, बगतै बग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग, चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर तरिया पसार रहाओ, हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख, दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हौरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई रहाओ, नीम पयो आंब, आंब पयो नीम्बा, केला पाका चार, नालियेर फल से बरपाका, मूर्ख मुक्त गवार, हर पयो खांड, रेत में बिखरियो, हस्ती चुन्यो ना जाई, कह कमीर कुल जात पाता, जो चीटी होए चुन खाई, बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनी ले कागद, काटी ले गुडी, आकाश मध्य भरमी अले, पंच जना स्यो बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले, मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ, आनी ले कुंभ भराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरीये, हस्त बिनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखी अले, मंदिर एक द्वार दस जाके, गौ चरावन छाडी अले, पांच कोस पर गौ चरावत, चीत सो बछरा राखी अले, कहत नाम देव सुनो तिलोचन, बालक पालन पौडी अले, अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बारक राखी अले, वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवित ना गावो गो, अखंड मंडल निरंकार में, अनहद वेद मजाओगो, बैरागी रामै गावो गो, शब्दा तीता नहद राता, या कुल कह कर जाओ गो रहाओ, एड़ा पिंगला और सुख मना, पौने बंद रहाओ गो, चंद सूरज दोय समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो, तीर्थ देखना जल में पैसो, जी जंत ना सतावो गो, आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए, कठी पीतर नाओ गो, पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावो गो,
नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध समाओगो। माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कमन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहा हो चांद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवै परम तत है सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प की जय असमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना की जय हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय कुंभ जौ केदार नहाइय गोमती सहस गौ दान की जय कोट जौ तीर्थ करै तन जौ हिवाले गारै राम नाम सर तऊ न पूजै अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसै कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थाने क्या निशानी, तह बाजे सबदा नाहद बाणी। तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी। ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहै सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै। बीज मंत्र लै हृदय रहै, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रहै ना यलिया भाखै, पांचो इंद्री बस कर राखै। गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म ना जुवै हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ट करै। चौमुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामै गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंचभूत सबल है देही, गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहन कनहारे। साकत गौ अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत है संत मिलै मन बिकसै, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रब आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छलन आया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उर तारो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रपाया, तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब के लिख पाप गवाता, राम रसायन

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। पणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सपागा। गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई। साहिब का हुक्म ना करना जाई, रहाओ मां लाली प्यो लाला मेरा। हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया। पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लून हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई, आ जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

की सार सोई जाने, जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ, फिर सेती तन प्रेम रचाए, गुर कै शब्द तथा चित लाए, सहज सेती तन खरी सुखेली, तृष्णा तिखा निवारी जियो, सहसा तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारे, सुंदर जोगा तारी जियो, हौ मैं जलिया मनो विसारे, जंपर वजै खड़ग करारे, अब

जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह

सगल ले शलिया निर्भव निरंकार दयालिया जी जंत सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाडी गढ़ है, एक है सुपन है दाम ना छड़ है। राज कमाए करी जिन थैली ता कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तजबा महतारी। सुत मीत प्रात ते गुहजी ता कह निकट ना होई खलिया। होए अदूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी। ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते, ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके, हर हर नाम बस्यो जीता कै। साध संग पहे जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया। मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सोऊ। जाते बिरथा जात ना को, मात गर्व मैं जिन प्रतपारिया। जियो पिंड दे साई सवारिया, सोई विधाता खिन खिन जपिए। जिस सिमर तो अवगुण सब ढकी है,

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाद सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया। मारू महला पंजवा कर छेवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेहे पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंद पो हर एक नानक कियो मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जंतू किया प्रभ करण कर नेक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छड़ाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम है कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान है कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जा का काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जा प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निद गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई जो संपत्ति अपनी करमानी छन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर ऊपर तब सोब तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूटत नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है नासा कै साचे सुन लिवलाई है। आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मछकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिन सो आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है। आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपो ताड़ी लाई है। खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है। शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है। काल विकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरा प्रभ की है, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख सिर सनाहा हे। नीके साचे केवा पारी, ससव दल गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ल, सब सच्चे ओ महा हे। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोलै अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मै

काया नगर नगर गढ़ अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्मायल आपे आपो पाईंदा अंदर कोट छजे हटनाले आपे ले वह संभाले बजरक पाट जड़े जड़ जाने गुरसबदी खो लाईंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौकर थापे हुक्म रजाई दसवें पुरखा लेख्या पारी आपे लख लखाईंदा पौन पानी अग्नि एक वासा आपे की तो खेल तमासा बल्दी जल निवरै कृपा ते आपे जल निध पाईंदा तर तो पाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवने खेल किया सब थाई कला खिंच टाहाईंदा पार अठारह मालन तेरी चौर टुले पवने लै फेरी चंद सूरज दोए दीप कराखे सस्कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाईंदा चिलमिल चिलकै चांदना तारा सूरज किरणा बिजल गणारा अकथी कथो चिन्ह नहीं कोई पूरया मन पाईंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखै आप दयाला अनहद रुण चुनकार सदा तुन निरपौ कै करवाएंदा अनहद वाजै परमपौ भाजै सगल ब्याप रया प्रभ छाजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसै मन भावै हमें गर्भ गवाएंदा अमृत पिया सतगुर दिया अवर ना जाना दुआतिया एको एक सो अपर परंपर परख खजाना पाएंदा ज्ञान ध्यान सच गैर गंभीरा कोई न जाने तेरा चीरा जेती है तेती तो जाचै कर्म लै सो पाएंदा कर्म धर्म सच हाथ तुम्हारा वे प्रवाह खुट भंडार है तू दयाल किरपाल सदा प्रभु आपे मिल मिलाएंदा आपे देख दिखावै आपे आपे थापो थापे आपे आपे जोड़ विछोड़े करता आपे मार जीवाएंदा जेती है तेती तो दे अंदर देखै आप बैस बिज मंदर नानक साच कहै बेनंती हर दर्शन सुख पाएंदा मारू महला पहला दर्शन पावा जित तु पावा पाए भगत साचे गुण गावा तुद पाने तू पावे करते आपे रसन रसाएंदा सोहन भगत प्रभु दरबारे मुक्त पए हरदास तुमारे आप गवाए तेरा रंगराते अंदन नाम ते आएंदा ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मन तेरी सेवा जति सती केते बनवासी अंत न कोई पाएंदा विण जान आए कोई न जाने जोगश करे सो अपन भाणे लख चौरासी जियो पाए पाणे साल वाएंदा जोत सुभावै सो निच होवै मन मुख आप गणाए रोवै नामो पुल्ला ठौर ना पाए आए जाए दुख पाएंदा निर्मल काया उजल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवै बाहुड़ दुख ना पाएंदा बहु साधो दुख प्राप्त होवै भोगो रोग संत विगोवै हरखो सोग न मिटई कबहू विण भाणे परमाएंदा ज्ञान में होनी पवै सबाई साचा रवर या लिवलाई निरपव शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएंदा अटल अडोल अतोल मुरारे खिर मैं टाहे फेरे उसारे रूप ना रेख्या मितने कीमत शब्द भेद पति आएंदा हम दासन के दास प्यारे साधक साच भले विचारे मन्ने नाव सोई जन जासी आपे साच दरड़ाएंदा पल्ले साच सच्चे सच्चियारा साचे पावे

बिन नावें डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरा सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित सरीरा। बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है। पूरा सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साच सलाहे साच समावै, जिन गुरमुख को जाता है। जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए। नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है। मारू सोल हे तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा। जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है। आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो। जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरे न जम्मै चूकै फेरी। साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है। माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया। जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुन वरतै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा। गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा। पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण

आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवै मन वसाई। जन्म जिन मन वसिया से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है। आगमा गोचरो कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई। सदा शब्द सालाही गुणदाता, लेखा कोई न मंगै ताहा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावै लाख्या पेवा। जिन कौ नदर करै तू अपनी, गुरमुख अलख लखा है। पूरे सतगुर सो

नाम सलाहे बिकसै सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवो अगमया पारा तिसदा अंत न पाइय पारा वारा गुर प्रसाद रव्या कट अंतर तित कट मत आगाहा है। सब मैं वरता एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन देंदार जिक संबाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगते उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिरसाहा पातशाह है। सच्चा सतगुरु शब्द अपारा तिसद शब्द निस्तर संसारा आपे करता कर कर वेख देंदा सास गिरा है। कोट मदे किसै बुझाए गुर कै शब्द रते रंग लाए हर सा लाह सदा सुखदाता हर बख्से भगत सलाह है। सतगुर सेवै से जन साचे जो मर जमै काचन काचे अगम्या गोचर वे परवाह भगत वछलिया था है। सतगुर पूरा साच दृढ़ाए सच्चे शब्द सदा गुण गाए गुणदाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिखदा सहा है। सदा हदूर गुरमुख जापै सबदे सेवै सो जंत्रापै अनदन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ महा है। अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए मन अठ कर्म फिर जो नी पाए बिख्या कारण लब लुभ कमावै दुर्मत का दो रहा है। पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द हर नाम चित लाए मन तन हर रव्या कट अंतर मन पीने भगत सलाहा है। मेरा प्रभ साचा असर संगारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण मेरा हर प्रभ साचा सद ही साचा सिर साहा पातशाह है। से भगत सच्चे तेरे मन पाए दर कीर्तन करै गुर शब्द सुहाए साची बाणी अंदन गावै निरतन का नाम विसाहा है। जिन आपे मेल विछोड़ै नाही गुर कै शब्द सदा सालाही सबना सिर तू एको साहेब सबदे नाम सलाहा है। बिन शब्द तुदनो कोई ना जानी तुद आपे कथी अकथ कहानी आपे शब्द सदा गुरदाता हर नाम जप संबाहा है। तू आपे करता सिरजनहारा तेरा लिखिया कोई ना मेटनहारा गुरमुख नाम देवै तू आपे सहसा गणत ना ताहा है। भगत सच्चै तेरे दरबार है शब्दे सेवन पाए प्यारे नानक नाम रते बैरागी नामे कार्य सोहा है। मारू महला तीजा मेरा प्रभ साचै एक खेल रचाया कोई न किस ही जेहा उपाया आपे फर्क करे वेख विकसै सब रस देही महा है। वाजै पौन तै आप वजाए शिव शक्ति देही मैं पाए गुर प्रसादी उल्टो होवै ज्ञान रतन शब्द ताहा है। अंधेरा चानण आपे किया एको वरतै अवरना बिया गुर प्रसादी आप पछाणै कमल बिकसै बुद्ध ताहा है। अपनी गहन गत आपे जाणै होर लोग सुन सुन आख वखाणै ज्ञानी होवै सो गुरमुख बूझै साची सिफत सलाहा है। देही अंदर वसत्या पारा आपे कपट खुला मनहारा गुरमुख सह जे अमृत पीवै तृष्णा यगन बुझाहा है। सब रस देही अंदर पाए विरले कौ गुर शब्द बुझाए अंदर खोजे शब्द सलाहे बाहर काहे जाहा है। विण चाखे साध किसै ना आया गुर कै शब्द अमृत पी आया अमृत पी अमरा पद होए गुर कै शब्द रस ताहा है।
ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਸਭ ਗੁਣ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ ਹਮੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਸੁਹਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਸੱਚਾ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸੋ ਘਟ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੈ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਾਏ ਪਰਮਲ ਵਾਸ ਮਨਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਕਥ

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन मैं थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व मैं जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे करताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनों कृपा करे प्रभु अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभु मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभु तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभु अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार्य पो जगदीश, बल बल जाई प्रभु अपने ईस, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सबै उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पै एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करै सो तन तत् मानै, पिर तनै सिंगार रखै संगानै, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तनै दिलासा है। धन मांगै प्रयो बोबे तावै, जो पावै सो आन दिखावै, एक वस्तु को पहुँच ना साकै, तन रहती भूख प्यासा है। तन करै बिनो दो कर जोरै, प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरै, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरै भूख प्यासा है।
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸਾਧਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਰਸ ਸੁਖ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾ, ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗੇ, ਤਉ ਧਨ ਪਿਰ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸਾ ਹੈ, ਧਨ ਅੰਦੀ ਪਿਰ ਚਪਰਸਿਆਨਾ, ਪੰਚ ਤੱਤ ਕਾ ਰਚਨ ਰਚਾਨਾ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕਉ ਤੁਮ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਧਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੈ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਵਚਨ ਦੇਹੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਸਾ ਹੈ। ਪਿਰ ਕਹਿਆ ਹਾਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕਰੋ ਜਿਸ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਜਿਚਰ ਰੱਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊਟ ਸਿਧਾਸਾ ਹੈ। ਜਉ ਪਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਤਨ ਸਾਚੇ, ਤਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸਮਝੈ ਚੰਚਲ ਕਾਚੇ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਿਰ ਹੀ ਸੰਗ ਮੰਗੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਜਾਣੈ ਕਰਹਾਸਾ ਹੈ। ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਪਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਤਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਊਟ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੇਰੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਚਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਨਿਗੁਰੇ ਗਲ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਏ ਜੇ ਹਰ ਜੀਉ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਪੈਰਾਇਆ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਆਨੰਦੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਪਾਉ ਪਿਆ ਗਲ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸਰਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸੂਰੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਵਿਛੜ ਨਾ ਕਤ ਹੀ ਜਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕਿਛ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਠਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਉ ਰੇਣ ਤੇਰੇ ਜੋ ਦਾਸਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਸਿਰ ਸਿਰੈ ਨਿਬੇਰਾ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਕਹਿ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਦਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬਿਓ ਜਾਲਾ, ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ, ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਭੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਤਖਤ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹੀ।

ज्यों कुसुम पाट क्यो पाकारा, जा कहो मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाए कहा जी, सो बंदा जिस नजर नरा। कुदरत कादर करन करीमा, सिवत मोहब्बत अथा रहीमा, हक हुक्म सच खुदाया बुझ, नानक बंद खलास तरा। मारू महला पंजवां, पार ब्रह्म सभी उच बिराजे, आपे था पो था पे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किश भउ ना व्यापै बालका, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, रक्त किरम में नहीं संघारिया, अपना सिमरण दे प्रतपालिया, ओह सगल कटा का मालका। चरण कमल शरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर पौ नहीं काल का। समर्थ अकथ है गोचर देवा, जी जंत सब ता की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु प्रकारी पालका। तिसै प्राप्त होए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गहलीने अंध कूपते, विरले के ही सालका। आदि अंत मध प्रभ सोई, आपे करता करे सोई, भ्रम पौ मिटिया साध संगते, दालद ना कोई कहलका। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोर वाला, बासन मेट निबासन होई है, कलमर सगले जालका। संता की है रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखे नाली, सा सा सा राधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आलका। जै देखा तै अंतर जामी, निमखना विसराओ प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीवै तेरे दासा, बन जल पूर्ण थालका। तत्ती वाव न ता कौ लागै, सिमरत नाम अंधन जागै, अनद बिनोद करे हसिमरन, तिस माया संग न तालका। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही, अपना नाम देह प्रप्रीतम, सुन बेनंती खालका। नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग रते तेरा दासिया पारे, तेरा रंग रते तुद जेहे, विरले के ही पालका। तिन की धूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहूं बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नालका। साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, तिस जन का उपदेश निर्मालका। तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हम बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परमिया नालका। सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर कौ त्याई, नानक संत तेरा रंग राते, तू समरथ वडालका।

ना पाई जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए इतन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आए जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए मनमुख जगत निरतन है माया नू बिललाए अंदन फिरदा सदा रहे भुख न कदे जाए सांत न कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चितवदा रहे सहसा कदे न जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुख में रह सच्चे महे समाए। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए खाना शब्द चंगियाईया जित खाद सदा तृप्त होए पहनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे ना होए सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखाले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जप हर हर नाम ते आई है हमे अज्ञान गवापे अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे जिन चाखिया से निरपो पहे से हर अस्त्रापे हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापे। श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना विहाजे कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुरप्रसादी गुण पाई यान जिसनो नजर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ खरे परख खजाने पाई यान खोटिया नाही थाओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ अमृत का रस आया मन वसिया नाओ। श्लोक महला पहला हो मैं करी ता तू नाही तू होवे हो नाहे बुझो ज्ञानी बुझना एह अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाई है अलख वसे सब माहे सतगुर मिले ता जानी है जा शब्द वसे मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाई है उतो मत तराहे नानक सो हंग हंसा जप जापो त्रिपवन तसे समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानी है कल युग विच संसार आपे नो आप मिल रहया हमें दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल विखम संसार पौड़ी मन मुखे अंदर ना पालनी मुठे अमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत शास्त्र ना सोधनी मन मुख विगुते बिन गुर किने ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते।

पौड़ी। पाणै हुक्म नायोन पाणै सुख पाया, पाणै सतगुर मेलेओन पाणै सच ते आया। पाणै जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिन कौ पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा। जिन कौ अंदर ज्ञान नहीं, पै की नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा। मन की पत्री वचनी, सुखी हूं सुखसार, सो ब्राह्मण पलाया खीय, जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पड़े, गुर कै शब्द विचार।

पौड़ी तुद जग मैं खेल रचाया विच हम मैं पाईया एक मंदिर पंच चोर है नित करै बुरे आईया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरै परमाइया हाठा दोवै कीतियो शिव सख्त वरताइया शिव अगै सख्ती हारिया एवै हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवां आ गाहां कूतरांग पिछा फेर ना मुहडड़ा नानक सिज वेहा वार बहुना होवी जन्मड़ा महला पंजवां सज्जन मैंडा चाहिया हब कही दा मित हबे जाने अपना कही ना ठाहे चित महला पंजवां गुजड़ा लदमला।

बोलत ही बड़लाज। राम जे पाया राम ते भवन बार बार रहाओ, झूठा जग डहक कना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जे जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आया सा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जवा तुम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन पया ब्रह्म गया समुंदर है पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे। सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ। जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे। जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रया लिव सोई। जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल मैं अब कैसे परमावो। राम मोको तार कहां ले जई है, सोदो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ। तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन। जब जब आए केस ते पकड़े तै हर को नाम छावन रहाओ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रम नू रसपत इंद्री कया न माना। बाबा अब ना बसो एह गाओ, करी करी का लेखा मांगे काहिथ चेतू नाओ रहाओ। धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पा गए लै बांधे ओ जियो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा। राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अन पाओ किने

करते जन्म सिरानो कबू ना सिमर्यो राम। कह कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुक्त गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया, अखड़ घड़िया तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृढ़ समानिया। रहाओ अर्ध कौ अर्धया, सरद कौ सरदया, सलल कौ सलल समान आया। बदत जय देव जय देव कौ रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियारा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा। रहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहेगा। तन जोबन का गर्भ ना की जय, कागद ज्यो गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किश ना बसाहेगा। सिमरन भजन

प्यास ना जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सद सारिया। गुर कै शब्द मिलिया, मैं प्रीतम हूं सतगुर विट्टों वारिया। जब देखा फिर प्यारा, हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर होए विगास, प्रियो प्रियो सच नित चवा राम। प्रियो चवा प्यारे, शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिंगार होवे नित कामनो, हर हर नाम ते आवे। दया दान मंगत जन जीजै, मैं प्रीतम देहो मिलाए। अंदर गुर गोपाल ते आई, हम सतगुर विटों कुमाए। हम पाथर गुर नाम, बिख पफजल तारिय राम। गुरदेवो शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किश मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मिले, हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो, हम लागे सतगुर पाए। गुरपारस हम लोहो, मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहया राम। काया गढ़ सोहया मेरा प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास विसारी है। अदृष्टया गोचर पकड़िया गुर शब्दी, हम सतगुर कह बलिहारी है। सतगुर आगे सीस भेट दे, जे सतगुर साचे पावै। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावै। तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध। अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्यावै जगदीश। ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ दिन तरिया सुहेला। जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाग सतगुर जो पाए चले। तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल जो समाणी। हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध। अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगमा था। तू कड़कड़ पूर रहया, तू अलाखा पेहो अगम। गुर सतगुर बचन लहया, तन तन ते जन पुरख पूरे। जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, बबेक बुद्ध विचार गुरमुख। गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले। जा खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगमा था। तू कड़कड़ पूर रहया, सेवक जन सेवै ते प्रमाण। जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप। खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोख सब बिनसे। जिन मन चित एक आरा दया, तिनका जन्म सफल्यो सब किया करता है। जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे। जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे, सेवक जन सेवै ते प्रवान। जिन सेव्या गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप। ज्यो तू चलावै प्यारे, हों तिवें चला। हमरे हाथ किश नाहे, जा तू मिलै तहो आए मिला। जिनको तू हर मिलै स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई, जो गुर बचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तनी उपर, जिन गुर का भाणा मन्या भला। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावै प्यारे, हों तिवें चला। तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश। सब कर

गुरमन दीना सुन सब तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मुरारा कीमत कहीं ना जाई ठाकर तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जियड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिया वन्या दर्शन तेरे दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करै ता पीवा। आस प्यासी पर कह ताई ज्यो चात्रक बूंदे रे कहो नानक जियड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहेब साहो अमिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता प्राण सुदाता गुरुख जाता सल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए जाको कृपा करी जगदीशर तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जियड़ा बलिहारी जियो पिंड तो दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सदगुरु ढाग लिया मोहे पापी पड़दा ढाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनासी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बेदाते। उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का नानक दासता कह बलिहारी मिले नाम हर निमका। केदारा महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी रे आगमा गोचर ना जाई हर लखिया गुरपूरा मिले लखावी रे रहाओ। जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिवलावी रे सब को भगत करे हर केरी हर पावे सो थाए पावी रे हर हर नाम अमोलक हर पह हर देवै ता नाम ते आवी रे जिसनो नाम दे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छुड़ावी रे। हर नाम आराध है ऐसे धन जन कहिए तिन मस्तक भाग तुर लिख पावी रे तिन देखे मेरा मन बिकसै ज्यो सुत मिल मात गल लावी रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे मोको देहो मत्ती जित हर पावी रे ज्यो बछरा देख गऊ सुख मानै त्यो

मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रबलहो रे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमहो रे। अंतर काय अभिमान जोर तू, किश किश किश जानता, एहो दूर करो अपन गहोरे। जन नानक कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रेरंग देखै, जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बेडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी। केदारा महला पंजवां घर तीजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिना सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी, एक मन अनाथ नाथ राघो कृपाल रहाओ। अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो, उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल। शरण बंदन करना पते, भव हरण हर हर हर हरे। एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे परम मोह सागर लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवा कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हरदान रहाओ। सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा रखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोबिंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान, नानक कहो हर कै रंग रंगो, चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवा, हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई कमन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रतपालय सगल संभालय, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विदाते घट घट तुझै दिखाओ। केदारा महला पंजवा, प्रे की प्रीत प्यारी, मगर मन मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ। काड लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो, भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा, अहम बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दया लावड, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवा, हर बिन जन्म अकारत जात, तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ। तन जोबन संपै सुख पुगवै, संग ना निभत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जी होए सहात। केदारा महला पंजवा,
ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਲਸ ਸਾਥ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰਨਾ ਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਕੇ ਨਾਥ ਰਹਾਉ। ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਭੁਗਵਤ, ਨਹਿ ਨਿਬਹਤ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਖਾਤ, ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਥਿਆ ਗੋਚਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਾਥ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਸ਼ਤ, ਮਿਲੈ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਮਾਥ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂਪ੍ਰਬਲ ਭਈ, ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ਰਹਾਓ। ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ, ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਰਸਨਾ, ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ, ਬਿਦ ਤੀਖਣ ਸਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ, ਗਾਠ ਬਾਂਧ ਧਰੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮੈਂ ਖੋਰ, ਭਰਮ ਭੀਤ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕਰ, ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਆਪਣੀ ਓਰ ਰਹਾਓ। ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਚਾਰੋ ਤੋਹਰ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਇਥ, ਉਧਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ। ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਧਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਿਖੈ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਹਰ ਸਕਤ ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ, ਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹੋਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਭੈ ਕਲਮਲਹਾਨ ਰਹਾਉ। ਤਿਆਗ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ, ਕਾਲ ਸਿਰ ਪਰਜਾਨ, ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ, ਝੂਠ ਸਰ ਪਰਮਾਨ, ਸਤ ਪੁਰਖਿਆ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਹਿਰਦੈ ਤਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲਾਭ ਨਾਨਕ, ਬਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਛ ਵਿਆਪੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਉ। ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਆਪ ਰਾਖਿਓ, ਨੈ ਉਪਜਤੋ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਦਹਿਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਜਸ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਸ਼ਾਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੋਤ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਜੀਵੈ, ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ਰਹਾਉ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨੂ, ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਹਕ ਖੋਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਹਾਸ੍ਰਮ ਪਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ, ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਅਨ ਲਾਗੇ, ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ, ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਰੱਖੋ ਕੰਠ ਪਰੋਤ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤੈ ਧੂਰ ਲੇ ਮੁਖ ਮਲੀ, ਗੁਣਾ ਅਚਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ, ਨੈ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਕਲੀ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਬਚਨ ਕਾਰਜ ਸਰਵ ਪੂਰਨ, ਈ ਤੂਤ ਨਾ ਹਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਕ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ, ਬਿਖੈ ਅਗੰਨਾ ਜਲੀ, ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸ ਅਪਨੋ, ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਚੱਲੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ, ਕੋਟ ਸਾਂਤ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ, ਜਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਝੈ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਤਤ ਉਧਰੈ ਮੁਚੈ, ਰੇਣ ਜਨਕੀ ਲੱਗੀ ਮਸਤਕ, ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਪੀਤਰ, ਕੜਕਟੈ ਸਵਾਮੀ ਸੁਜੈ, ਸਰਨ ਦੇਵਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਬਹੁਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੁਜੈ। ਕੇਦਾਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਰਬਤਰ, ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਡਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੈ ਕਹਲਿਆ, ਹਰ ਗੁਣਿਤ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ,
हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही मीन बिशोहा नास है जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दूख किन सही है चात्रक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज करण प्रगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुभागा अंधन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्योंदे होरी कत सोभा पावै दर्श बिहुना साध जानो खिन टिकना आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हरसक बैरागी नाम लिव लागी कतो ना जाय नखेदया हर स्यो जाय मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवै हो कृपाल नानके स्वामी हर चरण संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख बिचारे नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वछल सुन अंचलो गहया कट कट पुर समानिया सुख सागरो पाया सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे राग के दारा बाणी कबीर जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना तेरा जानो एक याद कोई काम क्रोध लोमो बिबरजत हर पद चीने सोई रहाओ राज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया तीर्थ बरत नेम सो संयम सदा रह निकामा तृष्णा अरमाया परम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा निरपव पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दस आप चलावे निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी कहत कबीर सुनो रे संत हो निभी खेप हमारी री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो बोलो पहिया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझै हर रस पावै पाई जेते कट अमृत सब ही मैं पावै सह पियाई नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै तमन खीवा पाई अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी उबट चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी काम

चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिष्टा के मुंदे दुर्गंध ही के बेडे रहाओ। राम ना जपो कवन प्रम पूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राखो रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे क्या को करे पुरानी जात सपावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ मैं बसते फुलवा तो देह अयाने कहो कबीर जे राम ना चेते ओ बूढ़े बहुत सियाने। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान पाओ पंक्त स्यों काज ना कछु है मेरो काम दीवान। राम बिसारे है अभमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सचमान रहाओ। लालच झूठ बेकार महामद एह बेद औद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संगना कश ले जाए रहाओ। देहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लो कुटम मिलो हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर ना देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमरहो जन्म अकारथ जाए। राग के दारा बाणी रविदास जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपच तुल समान। अरे चित चेत चेत या चेत काहे ना बाल्मी कह देख किस जात ते कहे पद अमरेओ राम भगत बसेख रहाओ। सुवान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपरा क्या सरा है तीन लोग प्रवेश। अजा मल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर कै पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पहराओ महला पहला कर पहला चौपदे एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। तुझ ते बाहर किशु ना होए तू कर कर देखे जाने सोए क्या कही है किश कही ना जाए जो किश है सब तेरी रिजाए। रहाओ जो किश करना सो तेरे पास किसे आगे कीचे अरदास। आखण सुनना तेरी बाणी तू आपे जाने सर्व डाणी करे कराए जाने आप नानक देखे थापो थाप। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग पहराओ महला पहला कर दूजा गुर कै शब्द तरे मुन केते इंद्रादक ब्रह्मा तरे सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे। भव जल बिन शब्द क्यों तरिया नाम बिना जग रोग ब्यापिया दुबदा डुब डुब।

मन राजा मन मनते मानिया मन सामने समाई मन योगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहेब पर पुरलीना साच शब्द निस्तारा पहरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रेस नहीं साचा क्यों छोड़े जमजालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कबो न छूट सो बिरथा जन्म पहो रहाओ तन मह काम क्रोध हो ममता कठिन पीर यत पारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी बहरे करन अगल पई होची शब्द सहज नहीं बूझिया जन पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुरे अंध न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणमत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी पहराओ महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुहंद करन पै बहरे मनमुख नाम न जानी अंदले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पहे कदे होहे नानिके अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए अनको दर कर कबहू ना जानस एको दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पहरो महला पहला सगली रैन सोबत गलफाही दिन से जंजाल गवाया खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूट सुख भारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ ऊन दो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर धंधा काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन्ना मैं गलफंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान में होने शब्द विचार राम रस चाखिया नानक साच पतीने पहरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती राम रसन रंग राता यवर न जानस शब्द पछाण सो अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मारे परम प्रराता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरखिया देसो घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहया सच वेसो साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाह पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटै गुरसेवा नानक नाम सखाई पैरो महला पहला हृदय नाम सर्व तन धारण गुर प्रसादी पाई है अमृत पदार्थ ते कृतार्थ सह ध्यान लिव लाई है मन रे राम भगत चित लाइय गुरमुख राम नाम जप हृदय सह सेती कर जाइय रहाओ परम भेद पौ कवो ना छूटस आवत जात ना जानी बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मोए बिन पानी धंधा करत सगली पत खोवस परम ना मिटस गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंत पसारा अकुल निरंजन स्यो मन मानिया मन ही ते मन मूवा अंतर बाहर एको जानिया नानक अवर ना दूवा पहरो महला पहला जगन होम पुन्नता पूजा देह दुखी ने दुख सह
राम नाम बिन मुक्त ना पावस, मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले। बिन नामे नेफल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म ते काल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। डांड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन सांत न आवे, जप हर हर नाम सो पार पर। जटा मुकट तन पसम लगाई, वस्त्र छोड़ तन नग्न पया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत कै बांध पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कदर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग पहरो महला तीजा, चौप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। रहाओ चारे वर्ण आख्या सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांड है कड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही काया कारा, घट वध को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। पैरो महला तीजा, जोगी गृह पंडित भेख तारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए। जागत रह ना मुसै कोए, रहाओ सो जागे जे सतगुर मिलै। पंच दूत ओ वसकत करै, सो जागे जो तत् बिचारै। आप मरै अवरा नै मारै, सो जागे जो एको जाणै। पर किरत छोड़ै तत् पछाणै, चहो वरना विच जागे कोए। जमै कालै ते छूटै सोए, कहत नानक जन जागे सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरो महला तीजा, जा कौ राखै अपनी सरनाई। साचै लागे साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा, रहाओ एहो आकार तेरा है तारा। खिर मैं बिनसै करत ना लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए। पैरो महला तीजा, मैं कामण मेरा कंत करतार। जिहा कराए तिहा करी सिंगार, जात सपावै ता करे भोग। तन मन साचे साहिब जोग, रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई। जाया पे वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रेम कसाई। मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पंत नान

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत तन नह पारना तन तन मेरे नारायणा। नानक बोलै अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी भैरव महला पंजवा आगे दय पाछै नारायण मद पाग हर प्रेम रसायण प्रभु हमारे शास्त्र साउण सुख सहजानंद ग्रह पाउण रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर किरपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागत आए। पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवै हाथ जब मार कै संगी पांथ गंगा जा

ना बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरे दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंदक कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दोखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरा

निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, बिख संचय नित डरता फिरे, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया। नेड़े नेड़े सब को कह, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखे पर ग्रह जाए, दर भिरे मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जाने आ, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड, अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट, अंतर बाहर निकटे सोए, जन नानक आवे ना जावे कोए, पैरो महला पंजवां, जिस तू राखै तिस कौन मारै, सब तुझ ही अंतर सगल संसार, कोटो पाव चितवत है प्राणी, सो होवै जे करै चोज विडाणी, राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरा दरबार, रहाओ जिन सेवया निरपौ सुखदाता, तिन पौ दूर किया एक प्राता, जो तू करै सोई फन होए, मारै ना राखै दूजा कोए, क्या तू सोचै।

कर जैसी ऊपर नजर करे करतार ते जन के सब का सवार तिसका राखा एको सोए जन नानक पढ़ना सा कह कोए पैरो महला पंजवा तौकड़िया जे होवे बाहर तौकड़िया जे विसरै नरहर तौकड़िया जे दूजा पाए क्या कड़िया जा रहा समाए माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ तौकड़िया जे दूजा करता तौकड़िया जे अन्याय को मरता तौकड़िया जे कह जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौकड़िया जे किश होए तिंगाण तौकड़िया जे भूल रजाण गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सबको तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पैज नानक सरनाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठ कैसे गवनहारी जील बिना कैसे बजर बाप नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहाँ को बगता बिन श्रवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को पेख है नाम बिना नर कहीं ना लिख है बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे नाम बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कखनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पैरो महला पंजवा हों मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रस यानो बासन रोग पवर बिनसानो हेत रोग का सगल संसारा त्रिबद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कते ना जावे पार ब्रह्म जिसकी नी दया बहां पकड़ रोगों कढ़ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवै ता महा आनंद चीत आवै ता सब दुख पंज चीत आवै ता सरदा पूरी चीत आवै ता कबे ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ चीत आवै ता सर्ब को राजा चीत आवै ता पूरे काजा चीत आवै ता रंग गुलाल चीत आवै ता सदा निहाल चीत आवै ता सद धनवंता चीत आवै ता सद निपरंता चीत आवै ता सब रंग माणे चीत आवै ता चुकी काणे चीत आवै ता सहज कर पाया चीत आवै ता सुन समाया चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंगजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नहीं करवासी हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल सोभा मेरी सब जुगे अंतर बाज हमारी थान थनंतर
कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पहरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला, नानक दास देख पय निहाला। पैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबसका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कह सतबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता कौ लख बार, एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप, होए आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊने सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्तया नंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर पय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कौ प्रगट पय गोपाल, ताँ कै दर्शन उसदा निहाल। सर्व गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम।
ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨਾ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ।

चितवत पाप ना आल के आवै, बेसवा भजत किशनै शरमावै। सारो दिन समझूरी करै, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै। माया लग पुलो संसार, वा पुलाया पुलावन हारै। राच रहया बिरथा व्यवहार, रहाओ पेखत माया रंग बिहाए। गड़बड़ करै कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवै। करण हारना जी मैं आवै, करत करत इव ही दुख पाया। पूर्ण होत ना कार्ज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना। तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हरे आप। हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया। नानक सतगुर पूरा पाया, पैरों महला पंजवा। अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए। साध शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे। राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई। तार लय सागर संसार, रहाओ जिन को लिखिया हर एहो निदान। से जंतर गै पावै मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ। अगै मिले निथावे थाओ, जुगै जुगंतर एहो तत सार। हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागै। जन्म जन्म का सोया जागै, तेरे भगत भगतन का आप। अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ। नानक के प्रभ सदी साथ, पैरो महला पंजवा। नाम हमारा अंतरजामी, नाम हमारा आवै कामी। रोम रोम रव्या हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान। नाम रतन मेरा भंडार, अगम्य मोला अपरिया पार। रहाओ नाम हमारा निचल तनी, नाम की महिमा सब में बनी। नाम हमारा पूरा साहो, नाम हमारा बेपरवाहो। नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ। नाम ना विसरै संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निद पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बन आई। धनवंते सही प्रधान, नानक जाके नाम निदान। पैरो महला पंजवा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा। तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभदात। तुमरी उस्तत करो दिन रात, रहाओ हम तेरे जंत। तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी। दान दे दा तारा, तव प्रसाद रंग रस माणे। कट कट अंतर तुम्हें समाणे, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ। सा संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते हुए दर्द बिनास। तुमरी माया ते कमल बिगास, हम बलिहार जाऊं गुरुदेव। सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभ मेरे। गुण गावे नानक नित तेरे, पैरो महला पंजवा। सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटै हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिलै सोए। रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जाका हुक्म ना मिटै कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा,
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੀ ਰੋਜ ਬਨਾਇਆ, ਬਲਨ ਬਰਤਨ ਕਉ ਸੰਬੰਧ ਚਿੱਤ ਆਇਆ। ਬੂਝ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਖਿਆ ਕਾ ਸਭ ਧੰਦ ਪਸਾਰ, ਵਿਰਲੈ ਕੀ ਨੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰਿਬਦ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਬਿਆਪ, ਜੋ ਲਪਟਾਨੋ ਤੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਵਾਂਗੀ ਸਿਉ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਜਾਵੈ, ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਰਤਨ ਹਾਰ, ਤੈਸੋ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ। ਏਕ ਵਸਤ ਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਤਾਹੀ ਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਸਹਾਮ, ਡਾਨ ਦੈਤ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਜਾਮ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਰੈ ਜੋ ਬਾਦ, ਤਿਨ ਨਿੰਦੈ ਨਾਹੀ ਕੇ ਸਾਧ ਰਹਾਓ। ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ

निंदक की गत कत हु नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर तहरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तर जो पूजे पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरव महला पंजवा, नाम हमारे बेदर नाद। नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव। नाम हमारे गुर की सेव, गुरपुर दृढ़ हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मज्जन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवे नाओ। पैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय। करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई न जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहल लाए, नानक साधु संग समाए। पैरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल रीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन मरण रहे, संत मंडल में जम किशु ना कहे। संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल उठाकर विश्राम, नानक उत्पोत भगवान। पैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप। तेह जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे। तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकटना आवे ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मारा आप जीवा ले, अपने भगत का सदा प्रतिपाल ले। सब किछ जानो तिसके हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजन ता कह नाओ, सुख पावे तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण तन तुम रह पास। एहो जग तेरा सब तुए ते आए, कर कृपा नानक सुख पाए। पैरो महला पंजवा, तेरी टेक रहा कल माहे। तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पोहे काल। तेरी टेक बिन सह जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक। सब मै रविया साहेब एक रहाओ। तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत।
तेरी टेक तरिया पौ सागर राखण हार पूरा सुख सागर तेरी टेक नाही पौ कोए अंतर जामी साचा सोए तेरी टेक तेरा मन तान इहा उहा तू दीवान तेरी टेक तेरा प्रवासा सगल ते आवे प्रभ गुणतासा जप जप आनंद करह तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा पहराओ महला पंजवां प्रथमे छोड़ी पराई निंदा उतर गई सामन की चिंदा लोभ हो सब कीनो दूर परम बैसनो प्रापे खजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम ते आए हर हर हरे सात जना कै संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्व मैं पूर्ण भगवान प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया गुरपुरे हर नाम दरड़ाया कर कृपा जिस राख आप सोई भगत जपै नाम जाप मन प्रगास गुरते मत लई कहो नानक तां की पूरी पई पैरो महला पंजवां सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे नित नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संगत पाईए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बंता बंधन कर्म तर्म हों करता बंधन काटन हार मन वसै तव सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निधान बेअंत अपार जिसनों कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावे त्यों रखो गुसाई पैरों महला पंजवां गुरमिल त्याग्यो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाम बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर भेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत जन मरण की मिटी जमत्रास साध संगत ऊंद कमल विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ देह आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी पैरव महला पंजवा सब ते उच्चा जाका नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसै मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ पुरख निरंजन सृजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई गुरपूरे ते निश्चल मत पाई कर कृपा जिस राखण हारा ता का सगल मिटै अंधियारा पार ब्रह्म स्यों लागो ध्यान पूर्ण पूर रहो निर्वाण भ्रम पाओ मेट मिले गोपाल नानक कहो गुर पहे दयाल पैरो महला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटै कलेस सुख सहज निवास
तिसै प्राप्त जिस प्रभ दे पूरे गुर की पाए सेव। सर्व सुखा प्रभ तेरो नाम, आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ। जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए। आवन जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभ की लिवलाए। बिन से काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतरयामी। कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरण आए। पहरो महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवै। नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। हर सिमरन शाड परम गत चाहै, मूल बिना साखा कत्या है। गुर गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ। तीर्थ नाए कहां सोच सैल, मन को व्यापै हूं मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बुझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरे दुख। काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राख है देकर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वडभागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जना आया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिग ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पुहै हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जापै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रि पवन सार जाकै सूत प्रोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्वाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए
ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ, ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ, ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ,

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदवो लंता सर्व जिया को प्रभ दान देता रहा अंतर देव न

डकाई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कहे कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु का सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही श्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्र सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम ब्रता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ ते तीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जरद रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हमसरा पिखारी देव जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर वाडी प्रबल माया जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमा वासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अग्न सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रख है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जमे जोत करे प्रगास बिजली चमके होया आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दाल अभय अंतरमंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंस सो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइये गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मैं रेउ समाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र माने असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चिराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहर, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस नाम हरि। प्रणवै नाम दे हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसै नर हरि। जो ना भजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम दे हो ना कह बिना, ना सो है बत्तीस लखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाहीं ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदाओ भले निंदाओ भले निंदाओ लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्रीरंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम दे एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत ते

अपना रंग सबको रचे, जित प्रभ लाया तित तित लगे रहाओ। मेघ समय मोर नृत्यकार, चंद देख बिकस कौलार, माता बार को देख आनंद, त्यो हर जन जीवे जप गोबिंद। सिंह रुचे सद भोजन मास, रण देख सूरे चित उलास, किरपन कहो अतन प्यार, हर जन कहो हर हर आधार। सर्व रंग एक रंग माहे, सर्व सुखा सुखार कह नाहे, तिसे प्राप्त हो निदान, नानक गुरजस करे दान। बसंत महला पंजवा, तिस बसंत जिस प्रभ कृपालो, तिस बसंत जिस गुरदयाल, मंगल तिस कै जिस एक काम, ते सद बसंत जिस हृदय नाम। गृह ताके बसंत गनी, जा कै कीर्तन हर तुनी रहाओ। प्रीत पार ब्रह्म मोल मना, ज्ञान कमाई है पूजना, सो तपसी जे साध संग, सा ध्यानी जस गुरे रंग। से निरपो जिन पौ पया, सो सुखिया जिस ब्रह्म गया। सो एकांति जिस रदा थाए, सोई निहचलो साच ठाए, एका खोजे एक प्रीत, दर्शन परसन हित चीत। हर रंग रंगा सहज मान, नानक दास तिस जन कुरबान। बसंत महला पंजवा, जी प्राण तुम पिंड दीन, मुग्ध सुंदर धार जोत कीन, सब जाचक प्रभ तुम दयाल, नाम जपत होवत निहाल। मेरे प्रीतम कारण करन जोग, हाँ पावो तुम ते सगल थोक रहाओ। नाम जपत होवत उधार, नाम जपत सुख सहज सार, नाम जपत पत शोभा होए, नाम जपत बिघन नाही कोए। जा कारण एह दुर्लभ देहे, सो बोल मेरे प्रभु देहे, साध संगत में ओ विश्राम, सदा हृदय जपी प्रभ तेरो नाम। तुझमें दूजा कोए नाहे, सब तेरो खेल तुझ में सुमाहे, ज्यों पावे त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवा, प्रभ प्रीतम मेरा संग राए, जिसे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो तहनु रहाओ। जा कौ खोजै सुर नर देव मुन जन सेखना लह पेव। जा की गत मित कही ना जाए घट घटो घट घटो रया समाए। जाके भगत आनंद मैं जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रभ रहो समाए। नानक जाचा एक दान कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां मिल पानी जो हरे बूट सब कही ना जाए घट घटो घट घटो रया समाए। जाके भगत आनंद मैं जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रभ रहो समाए। नानक जाचा एक दान कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां मिल पानी जो हरे बूट साध संगत त्यों मैं छूट। जैसी दासे तीर मीर तैसे उदाहरण गुरह पीर। तुम दाते प्रभ देनहार निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसे प्राप्त साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुक्त भगता राधा जुग जुगत। नेत्र संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद मन अगाना हर सह सुवाद। सेवक लागो चरण सेव आद पुरख परम्पर देव। सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान। बसंत महला पंजवां तुम बड़दा ते दे रहे जी प्राण मैं रव रहे। दीने सगले भोजन खान।

मोहे निर्गुण एक गुण ना जान, हाँ कछु ना जाना तेरी सार, तू करगत मेरी प्रभ दयार। रहाओ जापना तापना कर्म की तो आवै नाही कशूरीत, मन में रखो वासेक नाम तेरे की तरह टेक, सर्व कला प्रभ तुम प्रवीन, अंत ना पावे जलै मीन, अगम अगम उच्चे ते ऊच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी, जिन तू सेव्या सुखी से, संत सरन नानक परे। बसंत महला पंजवा, तिस तू सेव जिन तू किया, तिस आराध जिन जियो दिया, तिसका चाकर हो है फिर डान ना लागे, तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे, एवड भाग हो है जिस प्राणी, सो पाए पर निर्वाणी। रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशुना होई है पूर्ण अर्था, मानस सेवा खरी दुहेली, साध की सेवा सदा सुहेली, जे लोड़े सदा सुख पाई, साधु संगत गुरै बताई। ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम धुना, नानक गुरमिल गाए गुना। बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस आराधे जम किश ना कहे, जिसकी सेवा सब किश लहै, राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम। रहाओ जिसके तारे तरन आकाश, कटकट जिसका है प्रगास, जिस सिमरत पतत पुनीत होए, अंतकार फिर ना रोए, सगल धर्म है उत्तम धर्म, कर्म करतूत कै ऊपर कर्म, जिसको चाहे सुर नर देव, संत सवा की लगो सेव, आद पुरख जिसकी यादान, तिसको मिलिया हर निदान, तिसकी गतमित कही ना जाए, नानक जन हर हर ते आए। बसंत महला पंजवा, मन तन भीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किले विख काटे साध संग, नाम जपयो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय और तारे, सदा सदा हर जस सुना। रहाओ समरथ स्वामी कारण कारण, मोहया नाथ प्रभ तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेह निस्तार, भव खंडन दुख नाश देव।

अंतर्यामी प्रभु दयाल अपने दास को नजर निहाल कर कृपा मोह देहो दान जप जीवै नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां राम रंग सब गए पाप राम जप तो कछ नहीं संताप गोविंद जप तो समिट अंधेर हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग संत जना स्यों सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जह गोविंद भगत सो धन देस हर भगत हीन उदयान थान गुर प्रसाद घट घट पछान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू सदा संग निगट पेख प्रभ करन हार ई तूत प्रभ कार जसार चरण कमल सो लगो ध्यान कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए गुरपुरे की सदा सरनाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजा आप खाहे जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप अखंड पूर्ण जाको प्रताप गुण गोबिंद नित रसन गाए नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै फिर सतगुर दी सह बिललांती सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रव रहया गुरमिल नानक हर हर कहया। अहित सिद्ध नवनिद एह कर्म प्राप्त जिस नाम देह प्रभ जप जप जीवै तेरे दास गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया प्रभ मिले चिरी विछुनिया तुम रवो गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया अपना दास आप संभालिया से सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां किल बिख बिनसे गाए गुना आन दिन उपजी सही धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होवा साध तूर नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने करथाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने कहो नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाम
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ